0: श्रोताओं लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: जब हम दूसरों में दोष ढूंढने लगते हैं तो वास्तव में हम अपनी ऊर्जा का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं। उसी ऊर्जा को हम अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा सकते हैं। दूसरों की उचित प्रशंसा उन्हें आपके नजदीक ले आती है, चाहे इसे मजबूरी समझें या समझदारी। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना अच्छी बात है।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले पेश है मातृ वंदना।

मातृवंदना के पश्चात अब सुनिए उषा मंगेशकर का गाया ये भजन, जिसे लिखा है योगेश प्रवीण ने।

अभी आप चंदो आत्मा की आवाज़ में ये भक्ति गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा था अख्तर इंदौरी ने। अब सुनिए सुरेश वाडकर और साधना सरगम के युगल स्वरों में बलबीर निर्दोष का लिखा ये भजन।

0: प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एग्रीटिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें करेले की खेती के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इन द्वीपों की मिट्टी व जलवायु दोनों ही करेले की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है और करेले की खेती हमारे इन द्वीपों में पूरे वर्ष की जा सकती है। जहाँ तक करेले का बाज़ार भाव है, ये हमेशा बाज़ार में अच्छे भाव में ही बिकता है और बाज़ार में इसकी मांग भी हमेशा रहती है। करेले के फल से विभिन्न प्रकार की सब्जियां व अचार बनाई जा सकती है, जो खाने में अत्यंत स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त होता है। करेला कुछ बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है, जैसे पित्त, मधुमेह, गठिया रोग आदि। करेले के फलों में खनिज तत्व, विटामिन ए, विटामिन सी आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आइए अब कुछ चर्चा करें करेले की वैज्ञानिक खेती के संदर्भ में, क्योंकि जब तक हम उन्नत कृषि नहीं करेंगे तब तक किसी भी सब्जी से अधिक उत्पादन हम नहीं प्राप्त कर सकते और इस तरह सब्जियों से अधिक लाभ भी नहीं कमा सकते। जैसा कि हमने आपसे कहा, करेले की खेती हमारे इन द्वीपों में पूरे वर्ष की जा सकती है। हमारे यहाँ की जो भूमि होती है, लगभग सभी प्रकार की भूमियों में करेले की खेती होती है, परंतु अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाली एवं जीवांश्मयुक्त भूमि सर्वोत्तम होती है। मिट्टी की तैयारी का जहाँ तक सवाल है, अच्छी प्रकार से 3 से 4 बार मिट्टी की खुदाई करके या जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद खेत की तैयारी के समय ही मिला दें। अच्छी पैदावार के लिए मेहनत के साथ साथ मिट्टी और जलवायु के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। हमारे इन द्वीपों के लिए करेले की उन्नत किस्मों में पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग, अर्का हरित आदि प्रसिद्ध हैं। इनका प्रयोग कर आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करने के बाद कतार से कतार की दूरी 3 से 5 मीटर रखें तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बना लें। इन नालियों के दोनों किनारों पर 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर एक स्थान पर 3 से 4 बीजों को बोएं। इस प्रकार से पूरे खेत की बुआई आप कर लें। जहां तक उन्नत किस्मों का सवाल है, हमने कुछ 1 किस्में आपको गिनाई। इसके अलावा आप केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह से द्वीपों के लिए दूसरी उपयुक्त किस्मों को भी अपना सकते हैं। बुआई के बाद, बीज के जमाव के बाद एक स्थान पर 1 या 2 स्वस्थ पौधों को छोड़कर दूसरे पौधों को उखाड़ दें। जहां तक खाद एवं उर्वरकों का सवाल है, 50 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट तथा 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। उर्वरकों की सही सही मात्रा का पता लगाने के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं। पहली किस्त के बाद पुनः 30 दिन के बाद 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और फल आने पर भी 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 1 हेक्टेयर में करें। मौसम अगर लंबे समय तक सूखा रहता है तो सिंचाई ज़रूर करें। बुआई के बाद भी सूखा मौसम होने पर सिंचाई करें तथा लंबे समय तक सूखे मौसम में 3 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। खेतों से खरपतवारों को हमेशा साफ रखें तथा 20 दिन बाद पौधे के चारों ओर हल्की मिट्टी चढ़ा दें। हमारे इन द्वीपों में करेले में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होता है। करेले की फसल में लाल सुंडी कीड़े का आक्रमण होता है, जो कि पौधों के मुलायम भागों और पत्तियों को खा जाता है। इस कीड़े के बच्चे जमीन में 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराइयों में जड़ों को खाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 250 ग्राम सेविन घुलनशील पाउडर को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, फल मक्खी भी करेले के पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन का इस्तेमाल करें। पाउडरी मिल्ड्यू रोग से पत्तों और तनों पर सफ़ेद आटे जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में भूरे रंग के होकर शुष्क हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गंधक के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक हो सके कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें और आप करेले से अच्छी फसल लें।
0: अभी आप एग्री टिप्स कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है।

जहांसरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कैमल बे ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर आज सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान गुरुवार 27 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर नालंदा जलयान आज सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलयान की वापसी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल कार निकोबार जाने के लिए आज दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल 26 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। माय बंदर होते हुए डिगलीपुर जाने के लिए एमवी रंगत कल 26 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान 27 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटन शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के से चलेगा और इस जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कचाल कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी रंगत जाने के लिए कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान परसों यानी 27 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जाते व आते समय ये जलयान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी बाराटान कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी

0: जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये चलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं इंसान की जुबान सच छिपा सकती है लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी हो, गम हो, अपनापन हो या प्यार, सबसे पहले वही आंखों में दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि हमारी फिल्मों और गीतों में भी आंखों की खूबसूरती और उनके जादू का जिक्र बार बार होता है। इंद्रधनुष की इस कड़ी में बात

नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं इंसान की जुबान सच छिपा सकती है लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी हो, गम हो, अपनापन हो या प्यार, सबसे पहले वही आंखों में दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि हमारी फिल्मों और गीतों में भी आंखों की खूबसूरती और उनके जादू का जिक्र बार बार होता है। इंद्रधनुष की इस कड़ी में बात होगी इन्हीं आंखों की। आज का हमारा शीर्षक है नैन, जो कभी दिल मिला देती है, कभी शर्म से झुक जाती है और कभी कभी किसी का चैन ही चुरा लेती है।

एक नज़र और कहानी शुरू। कई रिश्तों की शुरुआत शब्दों से नहीं नजरों से होती है, इसीलिए कहा भी जाता है कि आंखें दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी की आंखों में रोशनी ही ना हो तो उसके लिए इस खूबसूरत दुनिया के रंग सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएंगे। यही सोच हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश की ओर ले जाती है। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित करना है। हमारे बात किया गया नेत्रदान दो जरूरतमंद लोगों को कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से देखने की नई उम्मीद दे सकती है।

दोस्तों, झुकी हुई निगाहों की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। कभी संकोच, कभी सम्मान और कभी प्यार। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। जिस तरह हमारी आंखें किसी के चेहरे की मुस्कान पहचान लेती है, उसी तरह नेत्रदान किसी के जीवन में मुस्कान वापस ला सकती है। इसलिए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर आइए, खुद जागरूक बने और अपने परिवार

0: रंगों की खूबसूरती तभी पूरी होती है जब उनमें रोशनी हो, और उस रोशनी का सबसे बड़ा सम्मान है उसे आगे बढ़ाना। आज जिन आँखों की तारीफ गीतों में सुनी, वही आँखें किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण भी बन सकती है। इसीलिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर नेत्रदान के प्रति जागरूक बने, दूसरों को भी प्रेरित करे और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए। इसी उम्मीद के साथ आज के इंद्रधनुष से श्री विद्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जो केंद्रित था नैन शीर्षक पर। प्रस्तुति थी श्री विद्या की। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान की 341वीं कड़ी।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहां एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान अंगद नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जांबवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर गिर जाता है।

ने सुना रामचरित मानस गान की 341वीं कड़ी। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, तत्पश्चात कार्यक्रमों का विवरण।

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है और कहीं कहीं पर गरज के साथ

बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। उधर मछुआरों को विशेष चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 28 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल।

अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत खेल जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे MP शक्तिवेल के साथ ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा ताइक्वांडो एक परिचय, इसके अलावा कुछ फिल्मी गीत। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे अनूप जलोटा और परवीन सुल्ताना। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप TN शेष गोपालन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। चित्रगीत कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे दिन में 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे आशा भोसले, अशोक खोसला और राजेंद्र मेहता। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहले सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप नॉनस्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। शाम 4:30 पर सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में इकबाल बानू और सोमेश कुमार को। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए कुछ लोकगीत। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे मंगलोटान के श्री हीमो ज्योति भट्टाचार्य के साथ की गई बातचीत, विषय होगा पशु आहार बना आजीविका का मजबूत आधार। शाम 6:30 पर सुनिए शामे बहार कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8 बजे। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं अब सुनिए जन सूचनाएं। इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 11.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 87% तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:34। ये थी मौसम की जानकारी। अब एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 सवेरे 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे।

श्रोताओं, आज सुबह 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप TN शेष गोपालन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे।

तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे और 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे आशा भोसले, अशोक खोसला और राजेंद्र मेहता।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। आटो ने सीमित हवाई संपर्क और हवाई किराए के मुद्दे पर प्रशासन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। और मध्य उत्तर अंडमान जिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 30 अगस्त को डिगलीपुर में किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी कदम उठाने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने निर्देश दिया कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिवसीय सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट PG 2026 परीक्षा के निष्पक्ष, सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। इस परीक्षा के लिए डिब्रेट मिडिल पॉइंट स्थित SIS कंप्यूटर एजुकेशन और इंडिया टेक्नोलॉजी को केंद्र बनाया गया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगतन और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी ने परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों को जारी दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय ने कल अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. मंजुलता राव ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कॉलेज की यात्रा और इतिहास को दर्शाती एक लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटरों ने द्वीप समूह के लिए सीमित हवाई संपर्क और लगातार बढ़ते हवाई किराए के मद्देनजर प्रशासन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, हवाई अड्डा निदेशक मुनीर मदंपत और नागरिक उड्डयन सचिव रजनीश कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में पर्यटन सीजन के दौरान द्वीप समूह के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा मार्गों पर अधिक क्षमता उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा प्रशासन से भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विभिन्न एयरलाइंस के साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाए जाने का अनुरोध किया गया। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अगस्त माह तक की गई कार्रवाई के अनुसार NDPS अधिनियम के तहत कुल 13 मामले दर्ज किए गए और नशीले पदार्थों को जब्त किया गया। अदालत द्वारा अब तक 5 आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है, जिन्हें कारावास की सजा और कुल 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के 11 चरमा रेंज के गश्ती दल ने हाल ही में मक्का पहाड़ राजस्व क्षेत्र से जब्त अवैध लकड़ी पर कार्रवाई की। विभाग के अनुसार जंगली घाट निवासी एस रामकृष्ण के कार्य परिसर से 0.11 घन मीटर पेडॉक की चिरी हुई लकड़ी और फर्नीचर पाया गया। पूछताछ के दौरान लकड़ी और फर्नीचर से संबंधित कोई भी वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वन विभाग ने आम नागरिकों से वनों और वन जीवों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने प्रातरापुर ब्लॉक के तहत UT आत्मा के सहयोग से कलकालीकाट गांव में एक किसान के खेत पर व्यावसायिक मुर्गी पालन में डीवार्मिंग और टीकाकरण पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रदर्शन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा कंपाउंडरों और ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। इसके अलावा हम्फ्रीगंज में पशु बांझपन निवारण शिविर का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को वन राजा चूजे, डीवार्मिंग दवाएं, मिनरल मिक्सचर और ओवीमिन

वितरित की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से हाल ही में बैडमिंटन और स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल तथा स्नूकर के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के सभी विजेताओं और उपविजेताओं को 29 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के तहत विभिन्न खेल स्पर्धा जारी रहेंगे। मध्य उत्तर अंडमान जिला शतरंज संघ उप शिक्षा कार्यालय डिगलीपुर और अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन के सहयोग से मध्य उत्तर अंडमान जिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप डिगलीपुर के बहुउद्देश्य सभागार में 30 अगस्त को खेला जाएगा। यह चैंपियनशिप सभी शतरंज खिलाड़ियों के लिए खुली है। इस प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी सितंबर में श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली अंडमान निकोबार राज्य शतरंज चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे। शीर्ष 4 खिलाड़ियों को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना जाएगा। राज्य चैंपियनशिप के लिए उनका प्रवेश शुल्क, यात्रा और रहने का खर्च एसोसिएशन द्वारा वहन किया जाएगा। पंजीकरण के लिए ₹100 प्रति खिलाड़ी निर्धारित की गई है, जबकि स्कूली छात्रों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। इच्छुक खिलाड़ी 28 अगस्त शाम 5 बजे तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया संवाद आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने FSSAI द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 150 से अधिक नोटिस जारी करने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। इन्फो इंडिया ने बसंतीपुर के 12 छात्रों को KCB शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने पिनाकी नगर निम्बूडेरा के बीच सड़क की तुरंत मरम्मत के लिए ग्रामीणों द्वारा 15 दिन की अंतिम चेतावनी दिए जाने के समाचार को प्रमुखता देते हुए अपनी बड़ी खबर बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट PG 2026 परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। आटो ने सीमित हवाई संपर्क और हवाई किराए के मुद्दे पर प्रशासन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। और मध्योत्तर अंडमान जिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 30 अगस्त को डिगलीपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी।

देशरागनी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वतन की मिट्टी ने ही हम सबको जीवन जीना सिखाया है, हम सबके मन में प्यार और एकता का दीप जलाया है।

दोस्तों, हमारा देश अमन और शांति का खूबसूरत गुलिस्ता है और हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस गुलिस्ता को ऐसे ही सजाए रखें ताकि हमारा देश हमेशा आबाद और खुशहाल रहे।

श्रोताओं, वतन की मोहब्बत का रंग कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के अर्थ को सार्थक बनाता है। हमारे कण कण में देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना छुपी हुई है।

0: देश रागिनी। अभी आप देश रागिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं, लीजिए अब कार्यक्रम में सुनिए खेल जगत कार्यक्रम।

0: बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री एमपी शक्तिवेल। शक्ति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: शक्ति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ताइक्वांडो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: ताइक्वांडो का शाब्दिक अर्थ यह है, ताइक बोले तो पांव है, वॉन बोले तो हाथ है, डो बोले तो डिसिप्लिन।
0: अच्छा
1: पांव और हाथ को मिलाकर बनाया गया कला है ये,
0: अच्छा
1: ये
0: एक
1: हमारा
0: डिसिप्लिन
1: मार्शल आर्ट।
0: मार्शल
1: जी हाँ,
0: आर्ट है।
1: डिसिप्लिन मार्शल आर्ट।
0: अच्छी बात है। इस मार्शल आर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
1: ये शुरुआत जो है कोरिया से हुई। एक्चुअली ये कोरियन मार्शल आर्ट ही है। जब जापान और कोरिया के बीच में वॉर चली थी, युद्ध छिड़ी हुई थी, तब जो है जनरल होंग चोई को जो है कैद कर लिया गया। उन्होंने जेल पर रहकर ही जो है इस मार्शल आर्ट को कराटे से भी एडवांस बनाया उन्होंने। और ये कराटे से एडवांस इसलिए है क्योंकि कराटे जो है स्लो गेम है, सेल्फ डिफेंस गेम है, और यह जो है आपका एडवांस गेम है, किक्स के इसमें मोस्टली ज़्यादा यूज़ है।
0: अच्छा, मतलब पाँव का ज़्यादा इस्तेमाल
1: जी
0: ताइक्वांडो में
1: हाँ
0: होता है। शक्ति जी, जब ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जाती है
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: इसके लिए भी कुछ फिक्स्ड सिलेबस वगैरह होता है,
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: कहते हैं
1: बिल्कुल
0: इसे?
1: होता है। जैसा आप जानते होंगे कराटे में जो है कतास कहते हैं,
0: अच्छा।
1: उसी तरह जो है हमारा ताइक्वांडो में ताइक्योक बोलते हैं। एक तरह से पुमसे भी कहा जाता है, ताइक्योक और पुमसे कहते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: तो ताइक्विक जो होता है तो इसमें क्या क्या शामिल होता
1: ये
0: है?
1: सिलेबस है, ये सिलेबस कंप्लीट जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे जो है आपका एडवांस भी जाते रहेगा। साथ में बेल्ट इशू करेंगे, जैसे बच्चे जो है क्लास 1 से क्लास 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, वैसे ही बेल्ट का ग्रेड भी होगा आप।
0: अच्छा, तो ताइक्विक 1 से
1: जी
0: ताइक्विक 2
1: हाँ
0: ऐसे
1: जी
0: कितना
1: हाँ,
0: ताइक्विक होता है?
1: 8 ताइक्योक होते हैं जो ब्लैक बेल्ट के लिए क्वालिफाई करना है।
0: अच्छा, और उसके बाद?
1: उसके बाद जो है हमारा डैंस होता है, 10 डैंस होता है ब्लैक बेल्ट में जो है, फर्स्ट डैंस, सेकंड डैंस, थर्ड डैंस, वैसे 10 डैंस होते हैं।
0: आप जो ट्रेनीज होते हैं उनको क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर?
1: जो बेसिकली हम पहले सिखाते हैं किक्स, पंच
0: अच्छा।
1: एंड सारे एक्सरसाइज दिखा सिखाते हैं टॉप टू बॉटम बॉडी के, तो परफेक्ट भी होना है। ऐसा नहीं है कि पंच चला दें, किक चला दें तो जो है ऐसी हवा में बातें नहीं करना है।
0: अच्छा।
1: अगर हमें टारगेट पे हिट करना है तो उसी टारगेट पे ही हिट करना है, तो वैसा हम सिखाते हैं। उसके बाद जो है उस सारे किक और पंच को मिला जुला एक कला है, उसको जो है हम ताइक्विक में तब्दीली किए हैं। तो
0: अच्छा।
1: उस ताइक्विक में जो है एडवांसली कभी पंच होता है, कभी किक होता है, साथ साथ में ब्लॉक्स भी होते हैं उसमें, और जहाँ पे जो है फोर्सली करना है तो वहाँ पे आवाज़ के साथ में जो है, आवाज़ के साथ में जो है फोर्स ज़्यादा निकलती है, तो उस जगह में हवाएं दे के करते हैं। जहाँ पे जो है आवाज़ नहीं देते, सिर्फ साइलेंटली खाली हवा रिलीज़ करते हैं,
0: अच्छा
1: तो वहाँ पे स्लोली ब्लॉक्स निकालते हैं। पंच एंड किक्स में जो है हवा ज़्यादा होती है।
0: तो इसमें जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं तो उससे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, मतलब टोटल एक एक्सरसाइज का जरिया ये बन सकता है
1: जी
0: ताइक्विक
1: हाँ
0: के अंदर
1: बिल्कुल
0: जितने
1: बिल्कुल
0: सारी
1: बिल्कुल।
0: चीज़ें हैं।
1: ताइक्विक से क्या है कि मेंटली जो है बहुत शांति पहुँचती है माइंड को, बहुत आदमी जो अगर टेंशन है तो उसको जो है अगर ताइक्विक वगैरह कर लें कंटिन्यूसली तो माइंड कॉन्सेंट्रेट भी होता है, साथ में जो है टेंशन बड़ा हो तो वो भी दूर हो जाता है।
0: रिलीज हो जाता
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: शक्ति जी, देखिए जो दूसरे मार्शल आर्ट के फॉर्म हैं, जैसे कुंफू हुआ, कराटे हुआ या जूडो को ले लीजिए, इनमें और ताइक्वांडो में क्या मेन डिफरेंस है?
1: वैसे करेंगे तो जो है हमारा कुंफू जो है आज भी स्पोर्ट्स नहीं है, कुंफू जो है आज भी एंशियंट मार्शल आर्ट की तरह ही रखा हुआ है अभी भी चाइना में एंड जापान में। एंड कराटे जो है आजकल स्पोर्ट्स में भी थोड़ी बहुत हैं, हाफ ऑफ द फील्ड, और हाफ ऑफ द फील्ड जो है उसको नहीं मानते हैं स्पोर्ट्स है, वो भी मार्शल आर्ट कहते हैं। जूडो तो टोटली स्पोर्ट्स है, और हमारा ताइक्वांडो क्या है, मार्शल आर्ट कम स्पोर्ट्स में भी अभी आ गया है। अभी हमारा ताइक्वांडो में क्या है कि कंपेयर में ये है कि इसमें कुंफू में जैसे कि जो है एनिमल्स का भी मिक्स्ड होता है।
0: पोस्चर्स और
1: जी
0: जो
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: जो
1: हाँ, एवरी साउंड्स के साथ में हिट्स भी होता है, मंकी स्टाइल होता है, स्नैक स्टाइल होता है, ड्रैगन स्टाइल होता है, तो ये सारे स्टाइल्स को मिला के जो है एनिमल का मिला के बनाया गया है कुंफू, यानी अपोनेंट को देखते हुए ड्रंकन मास्टर स्टाइल होती है जो पीने के बाद ही किया जाता हो, बिना पिए नहीं आती है। उसी तरह जो हमारे ताइक्वांडो में क्या है कि कम्प्लीटली जो है पंच तो होते ही हैं, ब्लॉक भी होते हैं, लेकिन किक्स इतने हैं कि लाइटनिंग फास्ट किक्स होती है, लाइक काबोएरा नाम सुने होंगे ब्राजीलियन मार्शल आर्ट, उसमें ओनली किक्स है, लेकिन हमारे इसमें पंच भी हैं, ब्लॉक भी हैं।
0: यानी ताइक्वांडो काफ़ी फास्ट है
1: जी हाँ फास्ट है,
0: ऐसा हम कह
1: एडवांस देन
0: सकते हैं।
1: कराटे, कराटे से निकला हुआ है लेकिन उससे भी फास्ट है ये।
0: शक्ति जी, जो ताइक्वांडो का जो खेल होता है तो इसमें भी कुछ गियर्स वगैरह होते हैं, जैसा बॉक्सिंग वगैरह में जो ग्लव्स वगैरह होता
1: जी
0: है
1: जी
0: या
1: जी
0: गार्ड्स होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ताइक्वांडो के लिए भी कुछ गियर्स वगैरह होते
1: जी
0: हैं?
1: हाँ बिल्कुल होता है, टॉप से बॉटम तक का होता है, हेड गियर्स होते हैं, चेस्ट गार्ड्स होते हैं, एल्बो गार्ड्स होते हैं। यहाँ में हमारा पंच का यूज़ नहीं है इसमें, ओनली किक्स का मैंने पहले भी
0: जी
1: बता
0: हाँ
1: दिया,
0: जी
1: इसलिए ग्लव्स नहीं पहनते हैं, पंच का यूज़ नहीं है। वली है कि नज़दीक भी जब आया था बंदा तो बिड़ने के लिए तो पुश पंच किया जाता है, जिससे हर्ट नहीं होगा, आदमी पीछे जाएगा, पुश पंच कहते हैं इसको,
0: अच्छा
1: तो उसके लिए सिर्फ जो है पंच का काम आता है और कोई पंच का काम नहीं आता। अबडामन गार्ड होता है, शिन गार्ड होता है,
0: अच्छा
1: कम्प्लीटली गार्ड्स के साथ में जो है ये खेला जाता है खेल। कराटे
0: अच्छा
1: में जो टच बैक होती है, टच करना है, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है, फुल डिलीवरी हो जाती है, एडवांस

खेल जगत की आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो एक खेल भी है और मार्शल आर्ट भी। इस संदर्भ में

0: अच्छा,
1: डिसिप्लिनली खेला जाता है।
0: तो लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है तो उसमें जैसे आपने कहा कि डिफरेंट गियर्स, डिफरेंट गार्ड्स होते हैं,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: एक्सीडेंट्स की जो आशंका होती है बहुत कम होती है,
1: जी हाँ, बहुत कम
0: प्रिकॉशंस
1: होती
0: पहले
1: है।
0: लिए
1: जी
0: जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ तो क्योंकि इसमें जो है पिछवाड़े पे नहीं मारना होता है, एब्डोमेन में नहीं मारना होता है।
0: तो इसमें आप लोग डाइट्स वगैरह पर भी खासा ध्यान देते
1: हाँ
0: हैं?
1: जी बिल्कुल, डाइट्स तो उसमें होना चाहिए अच्छी तरह। डाइट्स अगर अच्छी होगी तभी तो आपका बॉडी भी जो है अच्छा रहेगा।
0: तब
1: इसमें
0: बच
1: जो है
0: सकते हैं।
1: डाइट्स हम कहेंगे तो जो हैवी, जो आज के बोलते हैं हाई फाई खाना, वैसा नहीं है। नेचुरल जो है उस तरह के खाने की बात कर रहे हैं हम, हाई फाई की बात नहीं कर रहे हैं।
0: बच्चों को या जो ट्रेनीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो
1: जी हाँ
0: उसमें इस
1: सलाह
0: बारे
1: देते
0: में
1: हैं,
0: बताते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ बिल्कुल सलाह देते हैं। और सवेरे उठने के बारे में बताते हैं, माँ बाप को सम्मान करने के बारे में बताते हैं, नमस्कार प्रणाम करना है सबको बताते हैं। हमारे डोजो क्लास में जो है उनको सम्मान देने के लिए बो, तो जिसे इंग्लिश में बो कहते हैं, हमारे इसमें जो है क्योंग रे कहते हैं,
0: अच्छा
1: तो ये सब सिखाते हैं हम।
0: शक्ति जी, जो ताइक्वांडो का जो खेल है ये बच्चों के या जो ट्रेनीज के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में कितना साथ दे सकता है?
1: बहुत ही बहुत साथ देगा, बहुत बहुत साथ देगा मेंटल डेवलपमेंट और फिजिक डेवलपमेंट के लिए। साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जो स्कूल बच्चे हैं, उनको तो कॉन्सेंट्रेट में नंबर वन लाएगा, पढ़ने में भी उनको अच्छा साथ देगा, उनको याददाश्त बढ़ेगा, इसमें फिजिकली फिट रहेंगे। आजकल जो है बहुत बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में बच्चों को ला नहीं रहे हैं, बच्चे सिर्फ ट्यूशन पढ़ना है और पास करना है, सीट लेना, भागना है, उनको स्पोर्ट्स में वो रुचि नहीं रखते हैं। ये जो है जो अगर सही से मार्शल आर्ट सीखता है कम्प्लीटली, जहाँ ब्लैक डैन तक चला जाता है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। ये डिसिप्लिनली सबके साथ व्यवहार करेगा, अपने घर पे भी जो है माँ बाप को सम्मान करेगा, अपने बड़ों को सम्मान करेगा। ये हमारा जो है मोस्टली डिसिप्लिन वे में सिखाया जाता है, तो ये जो भी बच्चे करेंगे डिसिप्लिन होगा। देखिए पहले हमारे समय में तो हुआ करता था कि जैसे स्कूल से आएंगे तुरंत जो है खेलने ग्राउंड पर चले जाते थे, माँ बाप भी भेजते थे कि चले जाओ खेल कर आ जाओ, थोड़ी देर माइंड को जो है थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि दिन भर तो स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो काली पढ़ाई पढ़ाई बच्चों को जो है मेंटली जो है अपसेट बना देता है। इसमें बच्चे जो है दिमाग के दबाव से जो कुछ भी कर बैठते हैं, वैसा भी होता है अक्सर यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: एग्ज़ाम के समय में, तो थोड़ा
0: बिल्कुल
1: बहुत बॉडी भी जो है फिटनेस के लिए देना है।
0: शक्ति जी, जहाँ तक मार्शल आर्ट का सवाल है तो जो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं उनमें से कुछ कभी कभी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एक्जर्ट करते हैं और समाज में लोग उन्हें कुछ दूसरे अंदाज में देखते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: ये जो सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। जो अधूरा सीखता है, जो पूरी नहीं सीखता है, अधूरा सीखता है, वो जो है सेल्फ डिफेंस जो है डिसिप्लिन जो है खो बैठता है। ये जो है पूरे सम्मान के साथ अगर कम्प्लीटली अगर सीखेगा तो उसका इतना अच्छा डिसिप्लिन होगा कि पूरा समाज को भी वो जो है सीधा कर सकता है।
0: आजकल अक्सर सेल्फ डिफेंस की बात होती है, तो
1: हाँ
0: ताइक्वांडो
1: बिल्कुल
0: सीखने के बाद जो ट्रेनी होता है वो सेल्फ डिफेंस के भी काबिल हो जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये जो स्पोर्ट है वो काम आ सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये जो है सेल्फ डिफेंस भी है और साथ में जो है ऑफेंस भी है। ऑफेंस कहेंगे तो आप उसको बुरा नहीं मानिएगा कि जो है तो लड़ाई कराने के लिए सिखा रहे हैं, वैसा नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया है कि अगर जो कम्प्लीटली सीखेगा वो जो इतना डिसिप्लिन हो जाएगा कि किसी को जो है गाली गलौज तक नहीं करेगा, किसी के ऊपर गुस्सा भी नाराज़ भी नहीं होगा उससे, वो प्यार से समझाएगा, क्योंकि वो अपने आप को जो है औरों से अलग समझेगा, क्योंकि जो है वो तो साधारण लोग हैं, मैं तो सीखा हुआ हूँ, तो उनके साथ में वो कंपेयर कभी नहीं करेगा। तो इसी तरह जो है आपका जो ताइक्वांडो जो है हमारा किसी को हर्ट नहीं करेगा।
0: सही बात है, लेकिन एक अगर ज़रूरत पड़े तो सेल्फ डिफेंस के काम आ सकता
1: जी
0: है।
1: हाँ सेल्फ डिफेंस ऑफेंस दोनों काम आता है। हमारा जो ये खेल है ये स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए इसको, मार्शल आर्ट अपने लिए सीख लेना है और स्पोर्ट्स को जो है दिखाने के लिए लेना है।
0: तो शक्ति जी, आज आपने ताइक्वांडो के बारे में बड़े विस्तार से बताया कि ये कैसा खेल है,
1: हाँ
0: कैसा
1: जी
0: मार्शल आर्ट है। आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद जी।

0: or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, अब गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया खुद्दार फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जमीर काजमी तथा संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

0: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए आशिक फिल्म में समीर का लिखा ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की और इस गीत को संगीत से संवारा है संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गुलाम फिल्म का ये गीत। बोल है समीर के तथा धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए गुलाम फिल्म के इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से

0: पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
3: BJP के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में

0: आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के दो दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के ये आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अक्वापदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जल

0: स्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
1: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन यंग डिप्लोमैट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स लेवल एंगेजमेंट इन द कंट्रीज ऑफ पोस्टिंग एंड डीपन इंडियाज कनेक्शन विद लोकल कम्युनिटीज। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आस्क्ड ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन। यूपीआई कंप्लीट्स 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन, क्लॉक्स नियरली 13,000 फोल्ड राइज इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। गवर्नमेंट लिफ्ट्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीट, फ्लावर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And immense cricket centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo.

अभी आप परवीन सुल्ताना की गाई गजल सुन रहे थे, जिसे लिखा था मोमिन ने। अब सुनिए अजमत हुसैन खान मैकश का लिखा ये कलाम, जिसे स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

अभी आप जफर की लिखी रचना सुन रहे थे, जिसे आवाज दी थी परवीन सुल्ताना ने। अब पेश है अनूप जलोटा की गाई ये गजल, जिसे कलाम किया है जानिसार अख्तर ने।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनूप जलोटा और परवीन सुल्ताना की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल खेल में फिल्म के इस गीत से। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की। गुलशन बावरा के लिखे गीत को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

अभिया शैलेंद्र का गाया खेल खेल में फिल्म का गीत सुन रहे थे। गुलशन बावरा के लिखे गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर

0: जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं। और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। अब सुनिए RD बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार मजरू सुल्तानपुरी को लिखा जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गीत। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

अभी आप शहरयार की लिखी रचना सुन रहे थे, जिसे संगीत में ढाला था खय्याम ने। आवाज़ थी आशा भोसले की और फिल्म थी उमराव जान। अब कार्यक्रम के आखिर में प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के स्वरों में सुहाग फिल्म का ये गीत। गीत है आनंद बख्शी के तथा धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के गाए सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ ही तराने सुहाने कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत सुनिए टी एन शेष गोपालन द्वारा कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर संगति दी है एस टी श्रीधर ने, मृदंगम पर एम बी प्रसाद और ई एम सुब्रमण्यम ने घटम पर संगति दी है। तो आइए सुनते हैं टी एन शेष गोपालन द्वारा गाया आदि ताल में निबद्ध राग सन्मुख प्रिया।

0: अये वो भी ऐप से,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओ आप

श्रोताओं, अभी आपने सुना टी एन शेष गोपालन का कर्नाटक शैली में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इनके साथ वायलन पर संगति की थी एस डी श्रीधर ने, मृदंगम पर एच वी प्रसाद और ई एम सुब्रमण्यम ने घटम पर संगति दी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गाता चल। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, बोल है इरशाद कामिल के।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए यो यो हनी सिंह के संगीत निर्देशन गायन एवं उन्हीं के लिखे बोल में यह गीत। फिल्म का नाम है भाग जॉनी।

डॉली की डोली फिल्म से आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इसके गायक कलाकार हैं ममता शर्मा और वाजिद, बोल है इरफान कमाल के, तथा गीत को शुरू में पिरोया है साजिद वाजिद ने।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल ऐसे ही चलते रहेगा। आप अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को, एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, की एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन।

0: अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: श्रोताओं, पुनः स्वागत है आपका गीत गाता चल कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में यह गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल, ए आर रहमान ने धुन तैयार की है तथा फिल्म का नाम है आई।

श्रोताओ, आइए अब सुनिए रॉय फिल्म का यह गीत जिसे गाया है मीट ब्रूस अनजान ने। गीतकार है कुमार तथा इस गीत को सुरों में पिरोया है मीट ब्रूस अनजान ने।

श्रोताओं, चलिए सुनते हैं आयुष्मान खुराना के आवाज़ तथा उन्हीं के संगीत निर्देशन में यह गीत। फिल्म का नाम है हवाई ज़ादा तथा गीतकार है मिर्ज़ा गालिब।

0: श्रोताओं, लेते एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद जुड़ेंगे हम फिर इसी कार्यक्रम के साथ।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में एंड ए गवर्नमेंट

0: ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। हेब्रू फिल्म से फिल्म के इस गीत को आइए सुनते हैं। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और हिमेश रेशामिया ने। गीतकार हैं प्रणव वस्ता।

0: whatever.
1: अब सुनिए इंदीप बख्शी और सोनी बी के आवाज़ों में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड फिल्म का यह गीत। गीतकार एवं संगीतकार हैं इंदीप बख्शी।

0: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए जीत गांगुली के संगीत निर्देशन में यह गीत। गीतकार हैं कौसर मुनीर। इस गीत के गायक कलाकार हैं शर्मिली खोड़गे। फिल्म है वेलकम टू कराची।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम गीत गाता चल समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1397 कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति

0: अपने भीतर कोई ना कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
1: बिल्कुल,
0: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
1: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
0: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
1: जी
0: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते
1: बिल्कुल।
0: हैं, और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
0: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांक पुरुषों की तस्वीरें देखी हों तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
1: जी।
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांक जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
0: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
1: जी,
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर

0: यानी 8800-4405559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे
3: पशु पक्षी पर क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह गए,
4: लगता है बारिश हो गई है
2: क्या? अरे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा, काट।
7: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
8: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो।

0: इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
1: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
4: और पैसे कमाने हैं।
1: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
1: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे घर का सारा सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारा
7: सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
1: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
10: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट

और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है,

0: हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
1: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
0: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
1: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
0: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
1: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
1: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
0: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
1: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
1: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों

0: बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
1: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
1: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
1: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
1: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई।
3: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी। शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
3: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से

0: 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओ, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 1397 कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए चित्रगीत कार्यक्रम का। सुनिए कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म फिलहाल से, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलजार।

श्रोताओं, अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ों में यह गीत। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिए हैं हिमेश रेशमिया ने, तथा फिल्म का नाम है तेरे नाम।

श्रोताओं लीजिए सुनिए समीर के लिखे इस गीत को, जिसे शुरू में पिरोया है अनु मलिक ने, गायक कलाकार हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म है मुस्कान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रगीत। दिल चाहता है फिल्म का यह गीत हम आपको सुनवाते हैं। गीत के कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक, गीतकार हैं जावेद अख्तर।

श्रोताओं, अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ों में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का यह गीत। गीतकार हैं समीर।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं चेहरा फिल्म का यह गीत। गीतकार हैं डॉक्टर दीपक स्नेह, गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना तेलुगु कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत आशा भोसले, अशोक खोसला एवं राजेंद्र मेहता के आवाज़ों में गीत सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब लीजिए आनंद फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का। श्रोताओं, आप अपने पसंद के गाने इस कार्यक्रम के तहत सुन सकते हैं। मनपसंद गाने सुनने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर पैगाम भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला पैगाम, जिसे भेजा है संबलपुर कांकर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अनोखी अदा का यह गीत, जिसके गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

श्रोताओं, तमाशा फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए हमें पैगाम भेजा है मैंगलोर से मिस अनुष्का विश्वास ने। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लें।

श्रोताओं, चलिए लेते हैं अगला पैगाम, जिसे भेजा है शांति कुमारी लकड़ा ने ऑस्टिनाबाद से। ये सुनना चाहती हैं

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम पैगाम लेते हैं, जिसे भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान और पूजा छिपा ने। ये सुनना चाहते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रसारित होगा समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 230,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे

बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है

0: कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

138.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार के अनेक स्थलों पर हल्की से मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:34 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: विविध भारती FM श्री विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक के तहत सुन रहे थे आशिकी 2 तमाशा ये जवानी है दीवानी, रॉकस्टार उड़ता पंजाब, अजब प्रेम की गजब कहानी, वीर ज़ारा, रुस्तम, सिंह इज किंग फिल्मों के गीत। 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यू ही गाते रहो।

श्रोताओं, मनुष्य को हर वक्त सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक भाव और सकारात्मक विचार हमारे कार्यों पर सीधे रूप से प्रभाव डालते हैं। जब हमारा मन सकारात्मकता से भरा हुआ होता है, तब हमारा प्रत्येक कार्य भलीभांति संपन्न होता है। मनुष्य का स्वभाव हमेशा आशातीत होना चाहिए।

श्रोताओं, जिंदगी का मार्ग सरल नहीं होता है। हमें एक सच्चा राही बनना है, जिसके सामने भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, रास्ते कांटों से भरे हो, रुकावटें आती हो,

श्रोताओं, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ साथ लाएंगी, मगर हमें उन चुनौतियों में भी अपने मंजिल की सीढ़ी खुद ढूंढनी होगी और धीरे धीरे जीवन का मज़ा उठाते हुए, मस्ती करते हुए, सारे परेशानियों को दरकिनार करके उस मंजिल तक पहुँचनी है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे है, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh.

0: Tigak nye Emmanuel Leslie atim lenun tay mene ha angitin keke. Hoi yang atil ngang ne sintangamu, hik inuri changro minta kasate. Ita fen kanyo telah harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में सुनिए इकबाल बानो और सोमेश कुमार की आवाज़ों में चंद गज़लें।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप इकबाल बानो और सुमेश कुमार की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगालीर उलगम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप लोकगीत सुनेंगे। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आप पशु आहार बना आजीविका का मजबूत आधार इस विषय पर मंगलू टांड के श्री हेमो ज्योति भट्टाचार्य से की गई बातचीत सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी में कार्यक्रम देश की शान केंद्रित होगा मानवता की ज्योति मदर तेरेसा पर। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। रोजगार समाचार पर गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात्रि 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे काजू की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा फूल शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे।

मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में बिंदिया नायर की वार्ता आप सुनेंगे। समृद्धि और परंपरा का पर्व ओणम, साथ ही कुछ फिल्म गीत सुनाया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे रानू मुखर्जी और लता टर्क 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर पंडित मानस चक्रवर्ती का गायन सुनवाया जाएगा। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक का आप आनंद ले पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वानी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे अब्दुल रहमान नजा, इकबाल बानो, माही जमीन रंगीली और जमीर हुसैन दोपहर 1:10 पर। दोपहर बाद 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप लाइव फोन आउट कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप सुनेंगे गीत। 4:30 पर कार्यक्रम होगा लम्हे बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुनेंगे आधुनिक गीत। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में निकिता दुआ की वार्ता होगी ओणम समृद्धि संस्कृति और सद्भाव का पर्व ओणम। दर्द भरे नगमे फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में आप गीतों भरी कहानी सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सरगम। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा रात 9:30 पर चर्चा का विषय है आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म आन मिलो सजना से। गायिका है लता मंगेशकर, गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ मुदम। वणक्कम नेर्गले,

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसानवाणी कार्यक्रम।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: नमस्कार, किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसान भाइयों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंस कर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है ना साथियों? सही बात, अगर हम हंस कर कोई कार्य करते हैं तो वो ज़रूर सफल होता है। आइए इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज के इस अंक में हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में।
6: देश के सभी किसानों को उनके बुढ़ापे में सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए एक पेंशन योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे एवं सीमांत किसान

0: को 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर प्रति माह रुपए 3000 की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में उचित जानकारी बेहद जरूरी है। इस योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाया गया यह एक प्रकार का पेंशन योजना है और इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करता है तो उसे प्रीमियम राशि मासिक ₹55 व सालाना ₹660 देने होंगे। और अगर कोई किसान 40 वर्ष की आयु में इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे मासिक ₹200 प्रीमियम व सालाना ₹2400 प्रीमियम राशि देने होंगे। यह एक तरह का किसान रिटायरमेंट पेंशन योजना है जिसके द्वारा देश के किसानों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने पेंशन के रूप में कुछ धनराशि उनके खाते में भेजी जाती है। सरकार द्वारा किसानों को पेंशन के रूप में ₹3000 मासिक व सालाना ₹36000 तक दी जाती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC में जाकर प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बस कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आदि लेकर CSC सेंटर जाना होगा।
1: साथियों, अभी आपने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में ये जानकारी हासिल कर रहे थे। साथियों, अब हम कार्यक्रम में आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पशु आहार में अजोला से किस घटक की प्राप्ति होती है, यह आपको बताना है। 3 विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, पशु आहार में अजोला से किस घटक की प्राप्ति होती है, ये आपको बताना है। 3 विकल्प, प्रोटीन, वसा और विटामिन। साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में पशुओं को नमी, कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए उनकी साफ सफाई और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, बरसात में पशुओं की जो देखभाल होती है वो कुछ खास तरीके से करनी होती है। पशुशाला की सफाई, पशुओं के बाड़े को सूखा और साफ रखें ताकि पानी का रिसाव ना हो और नमी से बचाव हो सके। साथियों, संतुलित आहार, पशुओं को ताज़ा, सुपाच्य और संतुलित चारा दें तथा सड़े गले चारे से दूर रखें। शुद्ध पानी देना चाहिए, पशुओं को हमेशा साफ और ताज़ा पानी ही दें। टीकाकरण के बारे में ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। मक्खी, मच्छर व अन्य परजीवियों के बचाव से उपाय करें और समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेकर टीके लगवाएं। साथियों, पशु यानी गाय, भैंस, बकरी आदि सभी पशुओं के लिए जो है विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, बीमारियों से बचाव करना पड़ता है और ख़ासकर जो है बरसात के मौसम में, क्योंकि जब बारिश होती है तो पशु जो है भीग जाते हैं, उसे ठंड पकड़ सकती है और कई तरह की बीमारियां पशुओं में हो सकती है। साथियों, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये बताया जाए कि पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो हमें अच्छा दूध उत्पादन होगा। पशुपालन हमारे अधिकतर किसान साथी करते हैं, लेकिन पशु पालते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पशु आहार। आज हम इसी विषय से संबंधित कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, पशु आहार बना आजीविका का मजबूत आधार। साथियों, इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं मंगलूटान के श्री हेमो ज्योति भट्टाचार्य जी। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।
2: हेमो ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: तो सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि आप क्या काम करते हैं।
3: हम मंगलूटान में एक यूनिट फीड मिल का यूनिट खोले हैं, जिसका काम है मुर्गी का फीड बनाना और बकरी सारा पशु इंक्लूडिंग फिश मच्छी का।
2: जी ये तो बहुत ही अच्छा काम है, और ये काम करने का आपके मन में किस तरह से आई ये बात?
3: मेरे पहले मेनलैंड में एक 14,000 मुर्गी का फार्म था, उस समय मैं अपना खुद ही फीड मैन्युफैक्चर करता था और अपना मुर्गियों को पालता था, उसी से मुझे सारा कुछ पता चला। और दूसरा बात कि मुर्गी में मैं थोड़ा बता दूं, मुर्गी का दो चीज देखना बहुत जरूरी है, एक है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी और दूसरा क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन शुड बी अराउंड 23% और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी शुड बी अराउंड 2900 किलो कैलोरी पर केजी। ये दोनों चीज सिर्फ फीड से ही आएगा, बाकी मेडिसिन विटामिन ए बी मैग्नीशियम मिनरल मिक्सचर और ट्रेस मिनरल प्रोबायोटिक्स ये आप हम लोग सप्लीमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मुर्गियों को चाहिए ग्रोन अप मुर्गी को 2900 किलो कैलोरी पर केजी, वेरस क्रूड प्रोटीन चाहिए 23% ऑफ द फीडिंग। इसी तरह मच्छी में थोड़ा प्रोटीन ज्यादा चाहिए, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कम भी होने से चलेगा। मच्छी को इनिशियल स्टेज में 26-30% प्रोटीन चाहिए और ग्रोन अप मच्छी माने आफ्टर 1 month और 1.5 month अराउंड 23%।
2: जी आपने जो ये फीड बनाए हैं इनको इसी रेशियो में बनाया है, तो आप सबसे पहले बताइए कि मुर्गी के लिए जो फीड बनी है वो किस हिसाब से बनाई है, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से या किस तरह से?
3: मुर्गियों में तीन तरह का जनरली दाना बनता है, फीड बनता है, पहला प्री स्टार्टर, उसके बाद स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर का 10 days और 10-20 days स्टार्टर और 20 days टू अप टू मार्केटेबल स्टेज दैट इज 35-40 days फिनिशर।
2: जी
3: दोनों का साइज अलग अलग है, स्टार्टर है प्री स्टार्टर है जिसको हम लोग जीरो दाना बोलते हैं और एक नंबर दाना बोलते हैं, वो अराउंड 1 mm to 1.5 mm थिक रहे और उसी तरह स्टार्टर 2 mm 2.5 mm और फिनिशर रहता है 4 mm 3-4 mm।
2: जी ये तो हो गई मुर्गियों की बात, अब हम आ जाते हैं बकरियों में, तो क्या दाना जो है ये मुर्गियों वाला ही दाना जो है बकरियों को भी दिया जाता है?
3: नहीं, बकरी को दिया जाता है मैश दाना बोलने से पाउडर, दैट पाउडर शुड बी अराउंड 1000-1500 माइक्रोन साइज।
2: जी
3: ये रहता है, वेयर इज सभी जानवर का रेशियो अलग अलग है प्रोटीन और एनर्जी का। बकरियों में प्रोटीन थोड़ा कम, 16-18% प्रोटीन होने, बकरियों में भी डिपेंड करता है किस तरह का बकरी है, माने एक है बकरा जो बाजार में जाएगा, दूसरा बकरी जो दूध देता है।
2: जी
3: दोनों का दाना का अलग अलग है
2: जी
3: होना चाहिए। दूसरा बात गाय है, दूध देने वाला गाय है या सांड है, दोनों का दाना अलग। सांड को एनर्जी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन कम चाहिए, गाय को प्रोटीन ज्यादा चाहिए एनर्जी, वेरेज गाय का डाइट में सर्टेन पार्ट ऑफ कैल्शियम होना चाहिए ताकि वो दूध अच्छा करे।
2: बिल्कुल जी, तो आप उसी हिसाब से ये दाने बनाते हैं, तो उसमें इन बातों का ध्यान दिया जाता है?
3: जी, हमने अपने दाना में एमिनो एसिड, प्रोबायोटिक्स, मिनरल मिक्सचर, विटामिन मिक्सचर, विटामिन ए डी डी थ्री के ए बी डी थ्री के बी 12 बी 9 नियासिन लाइसिन मिथियोनिन और सर्टेन एंजाइम्स लाइक ग्रोथ प्रोमोटर विथ टॉक्सिन बाइंडर, जो यहाँ बहुत जरूरी है टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि ये फीड 1.5-2 महीना तक रहना चाहिए फ्रेश, इसी के लिए टॉक्सिन बाइंडर मिलाया जाता है क्योंकि मॉइस्चर अंडमान में बहुत ज्यादा है।
2: जी तो इसके लिए आपको बाजार जो है ये आराम से मिल जाता है, ये आपकी फीड जो है इसकी सप्लाई किस तरह से यहाँ पर हो रही है?
3: ऐसा है मैडम, हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, अभी इन फ्यूचर 3 जगह हमारा दाना मिलेगा, एक चोलधरी में, एक गोडाउन वहाँ पर है, एक बंगाली क्लब में और तीसरा मंगलूटान हमारा फैक्ट्री है, न्यू मंगलूटान विलेज।
2: जी अच्छा, आप ये बताइए ये जो दाना आप बनाते हैं तो इसके लिए आपने कोई फैक्ट्री या कोई जगह रखी होगी जहाँ पे ये बनता है, और वहाँ पर बना के फिर उसका भंडारण किस तरह से करते हैं, मतलब ये काफी दिनों तक सेफ रहता है, रह सकता है?
3: जनरली जो टॉक्सिन बाइंडर मिलाने के बाद ये दाना एक बार सील्ड होने के बाद हम लोग जो पैकिंग करते हैं उस पैकिंग में लाइनर रहता है।
2: जी
3: बैग्स, गनी बैग्स के अलावा, प्लास्टिक गनी बैग्स के अलावा अंदर में लाइनर रहता है, वो 3 महीना तक ठीक रहता है, उसी 3 महीना शेल्फ लाइफ है, उसी हिसाब से बनते हैं, क्योंकि ये दाना हार्ट बेक

0: ये फीड कंजम्पशन रेशियो अच्छा कैसे होगा? जितना फ्रेश फीड होगा उतना ही फीड कंजम्पशन रेशियो अच्छा होगा
1: जी,
0: फीड कंजम्पशन रेशियो अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, चूंकि हम लोग को लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रेश फ्रेश माल बना के दें जो कि विद इन वन वीक ही कंज्यूम हो। जरूरत नहीं है 3 महीना 6 महीना का स्टॉक करके और बाहर सप्लाई। ये हम लोग, ये मेनलैंड बेस्ड जो कंपनी है वो लोग करते हैं, क्योंकि उनका आने में ही 1-1.5 महीना लग जाए।
1: तो भाई इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे इन द्वीप समूह में जहां भी मुर्गी पालन, गाय पालन, बकरी पालन हो रहा है, तो उनके आहार के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम जो है हेमोज्योति भट्टाचार्य जी जो है वो कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य में पूर्णता सफलता पाएं और आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपका जो ये पशु आहार है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे पूरे द्वीप समूह में फैल जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी बातें बताई, इतनी जानकारी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: साथियों, पशु आहार बना आजीविका का मजबूत आहार, इस विषय पर अभी आपने विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। बता रहे थे मंगलूटान गांव के रहने वाले श्री हेमोज्योति भट्टाचार्य जी। उम्मीद करते हैं साथियों अब आपको पता चल गया होगा पशुओं को आहार में क्या कुछ देना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान साथियों को ये बातचीत जरूर अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: किसान भाइयों, जब हम खेती बाड़ी का काम करते हैं तो हमें अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे खेतों की मिट्टी सही नहीं होगी तब तक हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। साथियों, आइए लेते हैं जानकारी भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखें।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे कायम रखा जाए। इस संदर्भ में ऊंची नीची व ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक उसमें खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि की ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी है। सीढ़ीदार खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत 8% से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश का अधिक पानी सफलतापूर्वक खेतों से बाहर जा सके और मिट्टी का कटाव कम से कम हो। खेत में अंदर की ओर एक नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। कंटूर का तात्पर्य है समान ऊंचाई पर, अर्थात किसी पहाड़ या फिर किसी भूमि पर एक ऊंचाई के स्थानों को एक पंक्ति में मिला देना। ट्रेंचिंग का अर्थ है नाली बनाना, अतः एक ही ऊंचाई पर नाली बनाने को कंटूर ट्रेंचिंग कहते हैं। पहाड़ी जमीन पर जहां ना तो खेत बनाना संभव है और ना कोई फसल लेना, वहां पर हम कंटूर ट्रेंचिंग पद्धति से बागानी फसलें व घास आदि सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जंगल साफ करने के बाद 8 से 10 मीटर की दूरी पर कंटूर पर खूंटी लगा दें। ये दूरी लगाए जाने वाले पौधे के अनुसार तय की जाती है। पंक्ति के नीचे एक जैसी पंक्ति मिल जाए और नाली पौधे से 2 से 15 मीटर ऊपर रहे। नाली बनाने से निकाली गई मिट्टी को नाली के नीचे की ओर एक मेड़ के रूप में रख देते हैं। पहाड़ी जमीन पर पानी को भूमि के अंदर जाने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पहाड़ों में पानी ठहर नहीं पाता है, अतः नाली बनाने से पानी को भूमि में ले जाने में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे लगाते समय भूमि की ऊपरी परत खुल जाती है। नाली बनाने से ऊपर की अच्छी उपजाऊ मिट्टी नाली में आ जाती है। बेकार भूमि में कंटूर ट्रेंचिंग विधि द्वारा पानी रोककर भूमि का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग का अर्थ है समान ऊंचाई के स्थानों पर मेड़ बनाना। ये एक ऐसा उपाय है जिससे ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव कम करके खेती किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग 6% ढाल तक की भूमि पर की जाती है। ये प्रायः शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ इसे अधिक बारिश के क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, जिसे हम ग्रेडेड बंड कहते हैं। दो मेड़ों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर, मेड़ की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तथा मेड़ के नीचे की चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर एवं ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तक रखना चाहिए। कंटूर बंडिंग से भूमि का संरक्षण होता है और साथ ही साथ ढालू भूमि में जल प्रबंध भी आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में दलहनी फसलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन फसलों का प्रयोग खाद, भोजन तथा चारे के रूप में होता है। दाल की खेती सिंचाई की असुविधा वाले स्थानों में भी आसानी से की जा सकती है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती है, जो कि वायुमंडल से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खींच लेती है। इस फसल के बाद नाइट्रोजन वाली खाद का अधिक प्रयोग न करने पर भी खेत से अच्छी फसल मिलती है। हमारे इन द्वीपों में बारिश अधिक होने के कारण मिट्टी कटाव की समस्या भी ज्यादा है। दलहनी फसल मिट्टी कटाव को रोकती है या कम करती है।

0: इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जो कि खेत की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक गुणों में सुधार लाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार भूमि का सही प्रयोग और सही फसल के चुनाव से हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं।
1: साथियों, अभी आपने जानकारी हासिल की भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखें। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। साथियों, हमने आपसे पूछा था कि पशु आहार में अजोला से किस घटक की प्राप्ति होती है। तीन विकल्प भी दिए थे, प्रोटीन, वसा और विटामिन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अजोला में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बहार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म डॉन के एक गीत के साथ। गायिका है आशा भोसले, गीत रचना इंदिवर की तथा संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: लीजिए अब सुनिए सपना मुखर्जी उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म यलगार का ये गाना। सुदर्शन फकीर के बोल को संगीत से सजाया है चन्नी सिंह ने।
1: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं फिल्म बेमिसाल का ये गाना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है RD बर्मन ने।

शब्बीर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है तथा फिल्म का नाम है कुली।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गुलशन बावरा की गीत रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है तथा फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।
1: वादा।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:30 पर युवाणी में कार्यक्रम देश की शान केंद्रित होगा मानवता की ज्योति मदर तेरेसा पर। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। ये तो थे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम, और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। हमारी पहली सभा में कल सुबह 5:30 पर आप सुनेंगे अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे काजू की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा फूल शीर्षक पर 6:15 पर। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। सात बजकर 15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे, और इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे की। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में बिंदिया नायर की वार्ता आप सुनेंगे समृद्धि और परंपरा का पर्व ओणम, साथ ही कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रानू मुखर्जी और लता टर्क 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर फिल्मी

गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे अब्दुल रहमान नजा, इकबाल बानो, चांद इकबाल, माहिर जमीन रंगीली और जमीर हुसैन। दोपहर 1:10 पर 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये तो थी हमारे केंद्र से कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूपीआई के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को होना चाहिए गर्व। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एआई के इस्तेमाल पर बल दिया। सीसीआई ने अंडमान लॉ कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के महत्व को बताया। और शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडमान कॉलेज में अतिथि संकाय की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 27 अगस्त को दोपहर 3:30 होगा साक्षात्कार। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा है कि हर भारतीय को देश की इस डिजिटल क्रांति पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत 2016 में आज ही के दिन हुई थी। इन 10 वर्षों में यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है और अब 11 देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2016-17 में यूपीआई के जरिए करीब 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी दौरान लेन देन की राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध सूचनाओं का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए बेहतर विश्लेषण किया जाए। श्री शाह ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने, भगोड़ों को वापस लाने और लंबित मामलों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम, कानून के मामलों की जांच में व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। सम्मेलन में पहले दिन आतंकवाद, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन तथा साइबर अपराध से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के

चीकू और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित से मुक्त घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जागरूकता कार्यक्रम और साक्षात्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सलाहकार वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा है कि आयोग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। अंडमान लॉ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मिश्रा ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें CCI के सीधे दायरे में नहीं आती है। उन्होंने व्यापारिक संस्थानों से निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से काम करने की अपील की। उन्होंने बताया कि CCI अपनी गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है। श्री मिश्रा ने अंडमान लॉ कॉलेज के छात्रों को भविष्य में आयोग की ओर से दिए जाने वाले 1 महीने के सवेतन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवसर देने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. PVN शर्मा ने श्री मिश्रा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड कार्यक्रम का लाइव फोन इन प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय कैनाइन डिस्पेंसर, बचाव, देखभाल और उपचार होगा। पशु चिकित्सा अस्पताल मंगलुटान के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लावले निनाद साहेब राव कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक इस लाइव कार्यक्रम में फोन नंबर 2447454 या 2456662 पर कॉल करके शामिल हो सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजनों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए दिव्यांगजन आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन संबंधित दिशा निर्देश, रिक्त पद और आवेदन पत्र का प्रारूप सहित सभी जानकारी समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सील बंद लिफाफे में निदेशक समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के पते पर जमा कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में स्नातक कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों के जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं उनके लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं वे प्रवेश और परीक्षा विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि संकाय और विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। यह नियुक्ति लोक प्रशासन और भारत को समझना जैसे विषयों के लिए जरूरत के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को प्रति व्याख्यान मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और शिक्षण कार्य की आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे अंडमान कॉलेज कार्यालय में होने वाले साक्षात्कार के समय अपने प्रमाण पत्र अवश्य साथ लाए। अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। नवंबर 2024 और मई 2025 सत्र में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया गया है कि डिग्री प्रमाण पत्र

तैयार करने के लिए अपना पासपोर्ट आकार का फोटो jnrmadmissionexam@gmail.com पर भेजें। फोटो केवल JPG प्रारूप में हो और उसका आकार 1 MB से कम होना चाहिए। फोटो भेजते समय फाइल के नाम की जगह छात्र को अपना पंजीकरण नंबर लिखना होगा। द्वीप समूह में ओणम का त्यौहार कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर केरला समाजन हॉल में कल शाम मलयाली समुदाय के लोग मिलकर ओणम का पर्व मनाएंगे। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगादन मुख्य अतिथि होंगी, जबकि शीशन भारतीय वन सेवा के अधिकारी सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर 29 अगस्त को दोपहर केरला समाजम में पारंपरिक साध्य का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजकों ने इसमें सभी लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। UPI के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को होना चाहिए गर्व। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए AI के इस्तेमाल पर बल दिया। CCI ने अंडमान लॉ कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के महत्व को बताया और शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडमान कॉलेज में अतिथि संकाय की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 27 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे होगा साक्षात्कार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: जन पॉलिसी जन कैयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:16 और 56 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमानी बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 28 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी रंगत 26 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 27 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। टीटी अंडमान जाने के लिए एमवी भारत सीमा 27 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 8 बजे टीटी अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट 27 तारीख को सुबह 7 बजे टीटी अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैन कौरे माका चूहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा।

0: एमवी बम्बो का कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कली दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कचाल कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगाल स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 27 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटान कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉलीबॉय कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी लॉन्ग आइलैंड एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुँचेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 27 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। लीजिए पहले सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है साजन का घर।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म दुलारा का ये गीत। गीत रानी मलिक का है तथा संगीत निखिल विनय का।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आना इस बात का संकेत नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि यह संकेत है कि जीवन हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। रास्ते में आने वाली परेशानियां हमारी परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य बनाए रखता है, वही अच्छे समय का सही मूल्य समझ पाता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। याद रखिए, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला निश्चित होता है। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखते हैं। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युवावाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, मदर टेरेसा विश्व की उन महान समाज सेविकाओं में गिनी जाती है जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों, अनाथों और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। दोस्तों, बचपन से ही उनके मन में दूसरों की सहायता करने और मानवता की सेवा करने की भावना थी। मदर टेरेसा ने अपना जीवन शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वर्ष 1929 में वे भारत आई और कोलकाता में अपना सेवा कार्य शुरू किया। उन्होंने लंबे समय तक एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को भी करीब से समझने लगी। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना और मजबूत हुई कि उन्हें अपना जीवन वंचित लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहिए।

दोस्तों, सन 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और उन्हें सम्मान तथा अपनापन देना था। संस्था के माध्यम से गरीबों, अनाथ बच्चों, बीमार लोगों और बेसहारा व्यक्तियों के लिए सेवा कार्य किए गए। दोस्तों, उनके लिए मानव सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण थी। मदर टेरेसा ने अपना अधिकांश जीवन कोलकाता में सेवा करते हुए बिताया। उन्होंने स्वयं सादगीपूर्ण जीवन जिया और दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। उनकी संस्था धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ दुनिया के कई देशों की सेवा कार्य करने लगी। उनके कार्यों ने अनेक लोगों को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रेरणा दी।

दोस्तों, उनकी निस्वार्थ सेवा और मानव कल्याण के प्रति समर्पण को विश्व स्तर पर पहचान मिली। सन 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भी मानव सेवा के प्रति समर्पित किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता के महत्व पर जोर दिया। सन 1980 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया।

दोस्तों, मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुआ। उनके निधन के बाद भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से उनकी सेवा कार्य आगे बढ़ती रही। उनका जीवन आज भी सेवा, करुणा, सादगी और मानवता के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। नफरत

दोस्तों, मदर टेरेसा का जीवन हमें यह संदेश देता है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमेशा बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, उसके दुख को समझना और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना भी मानवता की बड़ी सेवा है। उनका जीवन हमें दूसरों के प्रति दया, संवेदना और सहयोग की भावना रखने की प्रेरणा देता है। इसी कारण मदर टेरेसा का नाम मानव सेवा के इतिहास में विशेष सम्मान के साथ याद किया जाता है।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनवाते हैं फिल्म दुश्मन का ये गाना।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी, एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म कारोबार का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म आतंक ही आतंक का ये गाना। गायिका है साधना सरगम, गीत रचना सनम गाजीपुरी का तथा संगीत बप्पी लहरी का है।

अभी आपने कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म दलाल का ये गीत सुन रहे थे। गीत रचना अनजान की थी तथा संगीत बप्पी लहरी का था। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार को फिल्म कहानी किस्मत की में। राजेंद्र किशन के बोल को सुरों में पिरोया है कल्याण जी आनंद।

हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैनिक सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैनिक सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले SC ST OBC उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 7841-04 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देख सकते हैं। उधर भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल में अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30

करण ए एक सफरदरगंज एनक्लो नई दिल्ली 11022 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: उम्मीद 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ

0: ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
1: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
3: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
4: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उपप्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
1: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में

0: 만탄.
1: 예, 아카시바니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
3: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय पे उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान लगा है कि जैसे कि इस बार एलनीनो है तो मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मानसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खास कर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक SOP बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहां के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भी बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
2: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
3: नहीं, देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है। यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं। सबसे बड़ी है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहां पर किस तरह की फसलें लगाई जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करना, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट दायरे

0: खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी मगर हम टैकल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और अच्छे से कर रहे हैं और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
1: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
0: देखिए ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए आपके पास तैयारी अच्छी है तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि भी अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस फसलें भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है ICR के अंदर जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं, तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए, ये सब करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा वो और सुदृढ़ होता जा रहा है, तो ये सब चीजें तो होंगी। अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती हैं जो कि किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की, तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
1: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गांव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
0: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा यमुना में, सिमिलरली जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, यदि आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो यमुना सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं, तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, मगर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपको तालाब से पानी भी मिल जाएगा, आपको जब खेती के लिए भी मिलेगा आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल, और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं।

0: तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कि कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
1: नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं या पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो
0: जी
1: पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा ये जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी। और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती हैं नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली
0: जी
1: सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपको फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए,
0: जी
1: तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया। फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सके। क्योंकि कई
0: जी
1: बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फोडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो
0: जी
1: बहुत जरूरी है।
0: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं। ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके सामने एग्जाम्पल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है, और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती है, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती है, या कोई वार्निंग है, वो सारे इस देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि पता है, एलनीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए, जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें। और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहां पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं, जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1-1.5 घंटा चलेगा।
0: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
1: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
0: आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम

0: विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम संदेशे आते हैं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला फरमाइश हमें भेजा है दिल्ली से, रामनगर से, रमा शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, बिन्नी शर्मा और आराधिका शर्मा ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जीते हैं शान से का ये गाना, जिसे गाया है अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत रचना इंदिवर और सलील सलेंद्र की, संगीत अनु मलिक का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

0: रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली जॉनी।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है बिमली टान से मंदाकिनी और सुधीर ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पाप की दुनिया का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों ने। गीत अनजान की है तथा संगीत बप्पी लहरी का है।

आशा भोसले और एसपी सब बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सागर का गीत। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत आरडी बर्मन का है। पसंद करने वाले श्रोता है शादीपुर से नमी।

लीजिए, अब सुनिए। फ्रागन से मोनिका और संजीत का पसंद फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत के लिए। गायक है किशोर कुमार, आशा भोसले। गीत रचना मजरू की तथा संगीत आर डी बर्मन का है।

मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म धर्मवीर के गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है हेडो लिलीपुर से अभिषेक और दिव्या ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर यह गाना। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म आंखें के गीत के लिए हमें फरमाइश की है जंगली घाट से गीता, रितिका, नितेश और तनिष्क ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गाना। गीत रचना साहिर के तथा संगीत रवि का है।

आते हैं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 28 तारीख तक समुद्र में ना जाए। ये था मौसम का हाल। इसमें रात्रि के 10:30 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद की चौथी तिथि तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। समय मिला लीजिए, इस समय सवेरे की 5:28 और 53 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।